0: में निकल जी।
1: वैष्णव जी
0: Thank you, 15 for decom, please.
1: Next, 17 for 15 for decom.